तोद्वयापे श्रेष्ठ सब उपाई जी तोदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सच्यार मैडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सब नित्याया जिसनु कृपा करह तन नाम रतन पाया

पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मानो एक न चेत समूढ़ मना।

हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसाए मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन कहो आज संगरिए। पूर्ण है हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो मर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

नम सकार तसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने कट कट के, पट पट की जाने। जाब युद्ध करख करा करतारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब या करख कर तो हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन सृष्ट सब तारा, आप अपनी बूढ़ उचार।

एकै रूपानुप स्वरूपारं भयो राव कहीं पुपा। अंडज जेरज सेतज किनी उत्पुज खान बहोर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट भयो शंकर वकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचम पवे आ जुगा स्वरूप सुयम पव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखी उबार या सिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुहि तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे। पुरख जबन

रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हरि हो, ताके ताप तनक महे हरि हो। रिद्ध सिद्ध

मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जानियो। श्री यशपान कृपा तुमरी कार मैं न कहो सब तो है बखानियो। दोहरा

जिन को लगी प्यास अमृत से खाए, कल महे हो पुन गुण गोविंद गाए, सब सैनु कृपाल संभाले साए साए।

मनोह न विसारियन साध जना कै संग भव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बेदारियन।

दिवस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो घर राख बधाई तोय रहाओ विश्वे चस्या घड़िया पहरा थिती वारी मां भुआ सूरज कुरुत अनेक नानक करते के तेवेश रावतना श्री महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनवतार शब्द वाजंत तेरी रहाओ सहसाल नैन नन नैन है तोय को सहस मूर्त ननाए तो ही सहस पद विमल नानेक पद गंध बिन सहसाल गंध इव चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिसद चानन सब में चानन होए गुर साखी जोत प्रगट हुए जो तिस भावे स्वार्थी हुए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आई प्यासा

अनित है सुनित है अजात है अजाद है चर परिछंद प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग अंधा सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्म सर्वंग धर्म सर्व

माटी का क्या तोप है स्वामी, मानस की गत तेरी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे।

रहाऊ। तान सूचा सो आखी है जिसमें सच नाओ, पै सच राती देहोरी जेवा सच सुआओ। सच्ची नदर निहाली है बहुड़ ना पावे ताओ, साचे ते पवना पया पवने ते जल होए, जल ते त्र पवन साचया घट घट जोत समोए। निर्मल महला नाथी है शब्द रत पत होए, ए मन सच संतोखया नदर करै ते समाहे। पंच भूत सच पैरत है ज्योति ज्योत, पंच भूत सच पैरत है ज्योत सच्ची मन माहे। नानक औगुण विसरै गुर राखै पत ताहे। श्री राग महला पहला। नानक बेड़ी सच की तरियै गुर विचार, एक आवै एक जावई पूर पर अहंकार। मन हठ मत्ती बुढ़ी है गुरमुख सच सो तार, गुर बिन क्यों तरियै सुख होए।

जिस तै उपजै तिस तै बिनसै घट घट सच भरपूर। आपै मेल मिलावई साचे महल हदूर। साहे साहे तुझ समला कदे ना विसार्यो, ए ज्यो ज्यो साहिब मन वसै गुरमुख अमृत पेओ। मन तन तेरा तू धणी गर्भ निवार समेओ। जिने जगत उपाया त्रिभुवन कर आकार, गुरमुख चानण जानिऐ मन मुख गुब्द मुग्ध गुबार। घट घट जोत निरंतरी बूझै गुरमत सार। गुरमुख जिनी जानिया तिनकी चे साबास, सच्चे से तीरल मिलै सच्चे गुण प्रगास। नानक नाम संतोखिया जियो पिंड प्रभ पास। श्री राग महला पहला सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है एह जब लग जोबन सास है तब लगे हो तंदे। बिन गुण काम

सुख हर जल पाए, अंतर कमल प्रकाशया अमृत भरिया अघाए। नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमतले हर बोल, मन सच कसवटी लाइयै तुलिए पूरै तोल। कीमत किने न पाइयै रिद मानक मोल अमोल, पाई रे हर हीरा गुरमाहे। सतसंगत सतगुर पाइयै एहन सब सलाहे। रहाओ सच वखर धन रास लै, पाइए गुर प्रसाद जो अगन मरै जल पाइयै। त्यो तृष्णा दास दास जम जंदार ना लगई, ओ पव जल तरै तरास। गुरमुख कूड़ ना पावई सच रतै सच पाए, साकत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए। सच रतै गुर मिलियै सचै सच समाए। मन में माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर, सच वखर धन नाम है घट घट गहर गंभीर। नानक गुरमुख पाइय दया करै हर हीर। श्री राग महला पहला। पर मैं पाहे न विजवै जे पवे दिसंतर देस, अंतर मैल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिग वेस। होर कितै

सत्संगत हर पाई गुरमुख हर लिवलाए। आप गया सुख पाया मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो सो औगण आवे जाए। जिस सतगुर पुरख ना पेट्यो सो पौजल पचे पचाए। इहो मानक जियो निर्मूल है इहो कोडी बदले जाए। जिन्ना सतगुरु रस मिलै से पूरे पुरख सुजान। गुरमिल पौजल लंघी दरगै पत प्रवान। नानक ते मुख उजलै तुन उपजै शब्द निशान। श्री राग महला पहला। वणज करो वणजारियो वखर लिहो समाल। तैसी वस्त वे साही है जैसी निभै नाल। अगै साहो सुजान है लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो सो देखै पति आए। रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए। खोटे वणज वणजी है मन तन खोटा होए। पाही फाते मिर्ग ज्यों दुखणो नित रोए। खोटे पोते ना पवै तिन हर गुर दर्शना होए। खोटे जात ना पत है खोट नसी जिस कोए। खोटे खोट कमावना आई गया पत खोए। नानक मन समझाइए गुर कै शब्द सलाह। राम नाम रंग रत्या पार ना परम तिना। हर जप लाहा गला निरपौ हर मन माहा। श्री राग महला पहला कर दूजा। धन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार। पबन के रै पत ज्यों।

सज्जण मेरा रंग लै चाहे सुते चीराण, हम्पी वंजा डुमणी रोवा चीनी बाण। की ना सुने ही गोरी है अपन कन्नी सोए, लगी आवे साहुरे नित ना पेये होए। नानक सुती पेये जान वरती सन, गुणा गवाई कंठड़ी अवगुण चली बन। श्री राग महला पहला घर दूजा, दूजा आपे रसिया आप रस आपे रावण हार, आपे होवे चुलड़ा आपे सेज पतार।

हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना हो वही दुबदा बोल खुआर सो जन रलाया ना रलै जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखियै जो हर राखै उर तार मन तन सौंपै आगै धरै हमें विचों मार।

राम ते लॻण जनम विजो किन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच न कोई कर सकै किस थैरो वै रोज कीता किशु न हो वही लिखिया तुर संजो वड़पागी मेरा प्रभ मिले

अनेक गुण तेरे नानक चरणी पाए पर गुण नित सलाहिया जिसनु तिल नाथ माए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा राध्या दर गै सच खरे सर्व सुखा निध चरण हर पौजल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाइया बिखिया नाहे जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म ब्रह्म सेम दे मन अंदर एक तरे महादेव समूर्त पले।

की पोड़, काम क्रोध जी मैं चूड़, नाम बसार चले मन खूड़, साचे गुर की साची सीख, मंतन शीतल साच परीख, जल पुराण रस कमल परीख, शबद रते मीठे रस एक, हुक्म संजोगी गण दस द्वार, पंच बसे मिल जोते अपार, आप तो लै आपे बणजार, नानक नाम सवारण हार, गौड़ी महला पहला, जातो जाए कहाँ ते आवे, कै उपजे कै जाहे समावे, क्यों बांधे को मुक्ति पावे, क्यों अबनासी सह समावे, नाम हृदय अमृत मुख नाम, नर हर नाम नर हर ने काम रहाव, सहजे आवे सहजे जाए, मन ते उपजे मन माहे समाए, गुरमुख मुक्तो बंधन पाए, शब्द विचार छूटे हर नाए, तर बर पंखी बौ निसभास, सुख दुखिया मन मोहु विनास, साज बेहाग तके आगास, दै दिस धामे कर्म लिखिया, नाम संजोगी गोयल थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो करे हाट, गुरमिल खोले भजर कपाट, साधु मले पूर्व संजोग, सच रहस्य पूरे हर लोग, मंतन दिले सहस पाए, नानक तिंके लागू पाए, गौड़ी महला पहला, काम क्रोध माया में चीत, झूठ विकार लागे जित हित चीत, पूंजी पाप लोभ की कीत, तरतारी मन नाम सचीत, वाह वाह सच्चे मैं तेरी टेक, हो पापी तू निर्मल एक रहाओ, अगर पानी बोले पड़वाओ, जेवा इंद्री एक सुआओ, दिष्ट विकारी नाही पौ पाओ, आप मारे ता पाए ना, शब्द मरे फिर मर न होए, बिन मुए क्यों पूरा होए, परपंच व्यापरिया मन धोए, थे नारायण करे सो होए, बोध जड़ों जो आवे वार, ठाके बो दर गै मार, सच सलाही तन गुरुद्वार, नानक दर करिए कंकार, गौड़ी मेला पहला, उट्यो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन दस्तार, तै बन बेंदया आप मरार, रे मन मेरे परम न कीजे, मन माने अमृत रस पीजे रहाओ, जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कर करते जानिया, जल तर तीर्थ मज्जन नाम, देख बथार करूं किस गाम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो पर कर जाऊं, किस जाचू नाही को थाऊं, नानक गुरमुख सह समाऊं, गौड़ी महला पहला, सतगुर मिले सो मरण दिखाए, मरण रहन रसंतर पाए, गर्म नार गगन पुर पाए, मन खाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर सरन रहाओ, सतगुर मिले तंदुबदा भागे, कमल विगास मन हर पर लागे, जीवत मरे महा रस आगे, सतगुर मिलिए सच संयम सूचा, गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा, कर मिले जमका पमूचा, गुर मिलिए मिले अंक समाया, कर कृपा कर महल दिखाया, नानक होमे मार मिलाया, गौड़ी मेला पहला, किरत पया न मिटे कोए, क्या जाना क्या आगे होए, जो तिस पाणा सोई हुआ, अवर न करने वाला दुआ, ना जाना कर्म केवल तेरी दात, कर्म तम तेरे नाम की जात रहाओ, तू ए बड़दाता देवन हार, तोत नहीं तुझ भगत भंडार, किया गर्भ न आवे रास, जियो पण सब तेरे पास, तू मार जमाले बख्श मलाए, जो पावी त्यों नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे भरोसे तेरे, तन में मैल नाही मन राता, गुर बचि सब शब्द पछाता, तेरा तान नाम की बड़ियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी में हल्ला पहला, जिन कथ कहायो अप्यु पियाया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछान रहाओ, जिस न राम हृदय हर रास, सहज पाए मिले शवास, जाहे सवार साज बेहाल, इत उत मन मुख बांधे काल, एन सनाम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम धूरे, गौड़ी मेला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथे आकार, तीन अवस्था कहें बखियान, तुरिया अवस्था सदगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बौड़ जन्म ना होए हमर नरहाओ, चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमर सात पंडित मुख सोई, बिन गुरे अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जाके हृदय विसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई,
ਹਰ ਕੀ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਆਨੰਦ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਦੇਖ ਦਿਖਾਇਆ ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸ ਬਜਾਇਆ ਦੀਨਾਨਾਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਨੀ ਮੰਡਰਾਤਾ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੇ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਏ ਸੰਸਾਰੋ ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁੱਚ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇ ਭਾਰੋ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਤੀ ਦੇਖੀ ਜੋ ਧਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਰੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਰਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਬਹੁ ਨ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਰਹਾਓ ਹੁਣ ਤੁਦੇ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪਰਾਈ ਝੂਠੀ ਲਾਇਤ ਵਾਰੀ ਵੇਲ ਪਰਾਈ ਜੋ ਹੈ ਜੀੜੇ ਕਰੇ ਚੋਰੀ ਬਰਿਆਰੀ ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ ਛੂਟਰ ਹੋਈਏ ਨਾਰੀ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਏ ਸੁਪਨੰਤਰ ਤੁਦ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਰ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੀਆ ਤਾਂ ਮਨ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਪਲਤਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਨ ਢੋਈ ਅੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਓ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਰਹਾਓ ਤਾਜੀ ਤੁਰਕਾ ਸੋਏ ਨਾ ਰੁੱਪਾ ਕੱਪੜ ਘੇਰੇ ਪਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਨਕ ਝੜ ਝੜ ਪਏ ਗਵਾਰਾ ਕੂਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖੇ ਚਾਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇ ਨੀਮ ਦਵਾ ਲਿਓ ਸਾਰੀ ਪਸਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ ਸੰਚੇ ਸੰਚ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੇ ਹੀ ਅੰਧ ਜਾਣੇ ਸਭ ਮੇਰੀ ਸੋਏ ਲੰਕਾ ਸੋਏ ਨ ਮਾੜੀ ਸੰਪੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕੇਰੀ ਸਣ ਮੂਰਖ ਮਾਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਗ ਤਿਸੇ ਕਾ ਭਾਣ ਰਹਾਓ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਪਾਰਾ ਹਮ ਤਿਸਕੇ ਬਣਜਾਰੇ ਜਿਉ ਪਿਣ ਸਭ ਰਾਸ ਤਿਸੇ ਕੀ ਮਾਰਾ ਭੇਜੀ ਵਾਲੇ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਕਰ ਭਾਰ ਮਨਾ ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ

जग जन्मिया दूजे पाए मनमुख ना चेते आवे जाए। आप ला के प्रभ आप बुलाया ए जीव बड़ाणी चाकरी लाया महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया। कृपा कर सतगुरु बुलाए को

सिमर सब तपत बजाय रहा ताज मान जन्म मन वारो हर के दास के चन नमस्कार सास सास प्रभ मने समाले सो तन संचो जो चाले गौड़ी महला पैमा सूखे हरे किए के माहे अमृत सेवक को दिन अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आसा करी दया सत गुरु गुणतासा दुख नाटे सुख आय समाए।